0: तुम कुफा भी
1: लेतेना मपलाई रन ले दंगान ले फ्री तलू जाए 200,000 250,000 मंदे अतिलियारा अम्जो जाने 650,000 ने फिर शहीरा नज़ो विरंगा दिम्बुला पे कारण देखों फ्री जेजन मो रिमार्क थी को तो
2: जहाँ जो हंदे हा तुलियारा फ्री अम्जो 100,000 हाँ मफनार चब्बे का आरते ना मलाल का बेमिस लेते रहन
3: ए अंदर अच्छी रफेस हो हाँ फट्टी कुत्ते ने ना मैं याना सो वन रे वो फ्रेश हो वारी शुरुआत लने नहीं है तो सोनीला नीला नारंतलांड